जुगत न जाने छद में करवान सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना।

नानक मेरे शरीर का एक रथ कृतवा हो, जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी सतगुर संतों का धर्म गिरथवाओ, तेरे तेरा जत का जोर रखे रथवाओ, द्वापर रथ तपे का सत गिर

कपड़ा तो बड़ा सोहना है पर रंग पक्का होना चाहिए। इसी तरह मनुख दे रंग उस वाहिगुरु ने दित्ते।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों से नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया से, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी की सारी ओह गलत

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वह जिहड़ी वस्तु पानी है वह है कित्थे, वह कित्थे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पहाल। वह निधान, वह खजाना, वह दौलत, वह बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर की सिमली दे के कह रहे हैं कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप का मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है, तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की शरीर सरोवर दे अंदर। कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए। परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्मो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। सो हुण सारे इस पंक्ति उदास तो बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असी अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असी ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने हुए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, एथे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हां। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनू प्राप्त करना है। और ज्यों ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है, अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है, तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ करांगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मांड दे विच है वो इस दे विच है, अते ये एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शन्स दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है, ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक पहुंचे ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे ओ होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उस दीयां विधियां की हैं, उस कमल नू खिलाण दे वास्ते कि वह खिले उस दीयां की रिक्वायरमेंट सन, ये कीर्तन आने वाले दिनों दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दिओ टाइम सिर ताकि इस लड़ी नू असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नू जान सकीए, ते शरीर दे अंदर जो है उसनू जान जाइए, ते उसका रस्ता समझ लईए पे उस तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफल हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नू समझ लईए और शरीर नू समझन तो बाद इसनू सानू साधना पैना है, इसनू सानू फिर कढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नू साधना पैना है, इस उते बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है, वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नू समझ लवांगे इस नू साधना किवें है वह समझ लवांगे, इस शरीर के अंदर की है वह समझ लवांगे, उस तक पहुंचने का रस्ता की है वह सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असीं उस अंदरले जगत की खूबसूरती नू एक्सप्लोर कर लवांगे, अते जो अंदर साडे वस्तु नू पाउण नू महाराज ने कहा है उसनू असीं पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नू गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग

कण कण जाय सो करता कादर क्रीम दे जी रिज किस्माय साई कर कुमावनी त्रिशोटी तिन्ना पाए नानक एक बार हर तुझी नाई जाय सो करे जित सिर जाय सो करे जित सिर जाय सुधु।

सिर्फ मिठिया ही स्वीट चीजा ही नहीं, होर बहुत सारिया चीजा जो प्यारियां लगदिया स्वादलियां लगदिया कहते मिठिया समझ के उन्होंने खाया, पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्होंने रिजल्ट जो है अखीर दे जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगंग तरोगंग, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगंग तरोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदो बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हैं, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नू खास करके ग्रिस्तियां नू यह समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ ए नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां ग्रिस्ती लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लैंदे हां कि साडी सोशल लाइफ भी है, असीं ग्रिस्ती हाँ। हुण गुरु साहब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन इह नहीं असीं सुणिया, इह नहीं असीं सुणिया, असीं सिर्फ इन्ना ही सुणिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुणिया, ठीक है ना। गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, ते सानू शायद किसी ने दसिया भी ना हो। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए ग्रिस्ती, जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होने के नाल तेनूं एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस्ट सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी, कंट्रोल करन दी, अपने उत्ते को मास्टरी करन दी लोड़ नहीं।

है गृहस्थी, इसके अर्थ सुनो। सो गृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन सेंसुअल प्लेजर्स दे उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करने का अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हां इंद्रियां दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रिया दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वह शरीर दे ही तल ते रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया, उसनूं दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा। वह फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लैवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थी विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नू मास्टर कर ले, कंट्रोल च कर ले, काबू च कर ले, ते इना नू जित ले। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभाव हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभाव हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इना दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाने दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नू घटावे, अपनी नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनिया नीड्स नू वद तो वद सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे, बहुत ब्यूटीफुल एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही, सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच कहिंदे, जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸਨੂੰ।

0: अत सवाले का मतलब अति खूबसूरत, हर काया बहुत खूबसूरत, कोई ऐसा नहीं भी घट खूबसूरत है ज्यादा खूबसूरत, बदसूरत असी बना लेने वरना हर काया अपने आप यूनिक रब की कामनी। कहते हैं
1: काया कामने,
0: कामनी मैंने औरत,
1: अत सवाले फिर वसे जिस नाले,
0: अते फिर जिस दे नाल रहिंदा है वो अपनी औरत दे नाल रहिंदा है, इस तो दूर नहीं जांदा, इस दे रोम रोम दे विच समाया है, उसनूं अपनी औरत दे नाल इतना प्यार है, अपनी कामनी नाल इतना प्यार है, तो इस दे अंदर रहिंदा है, इस दे संग साथ रहिंदा है,

फिर सच्चे ते सदा सुहागन। कहिंदे इह काया जदों तक फिर इस दे नाल है इह सुहागन है, अते जदों तक सुहागन है इसनू कोई आंच नहीं आ सकती, इसनू कोई गम नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं आ सकता, उदासी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर जो नाल है पति नाल है। और कहिंदे अगर अपने जीवन दे विच इस काया रूपी कामणी नू इस दे पिर नालों विछोड़ दोगे, इस दे पिर तों दूर ले जाओगे, ये कहिंदे कुमला कुमला के मर जाएगी, ये उस विछोड़े नू सहार नहीं सकेगी, एक कुमला जाएगी, इसकी खूबसूरती टल जाएगी, ये बीमार पड़ जाएगी, ये उदास हो जाएगी, अते फिर ये पुकारेगी किथे गया मेरा साजन, किथे लै गए ये लोग मैनू, साजन देश विदेशी अड़े सानेड़े देन दी सार समाले तिन सजना मुंद नैन परहिंदी, ये मुंद ये जीव स्त्री ये रब दी कामणी इस दी अखां च फिर अथरू आणगे, ये फिर रोएगी, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी उस पति नू मिलन दे वास्ते उस दे गुणा नू याद करदी है, अखां च इसके अथरू हन, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिलां प्यारे, किवें अपने प्यारे नू वापस मिलां, क्योंकि इसनू भी तृप्ति नहीं आंदी, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिलां प्यारे, मार्ग पंथ ना जाणो बिखड़ा क्यों पाईए कृपारे, ना मैनू रस्ते दा पता है ना पंथ दा पता है, रस्ते दीआं कठिनाइयां बड़ियां हन। तो कहिंदे हन इस जो सिमली नू देण दा अर्थ यह है कि यह जो शरीर है असी इसनू यह समझना है कि यह रब दी औरत है और इस दा पति इस दे अंदर है, अगर कोई इस शरीर नू इस दे पति तो अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर करेगा तो उस दे जीवन दे विच उदासी आएगी, विछोड़ा आएगा, गम आएगा, डिप्रेशन आएगा, दुख आएगा, अते रोना ही रोना आएगा, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि औरत नू उसके पति तो विछोड़ दिता जाए तो होर की हुंदा है, कहिंदे ओह कुमड़ा आ जाएगी, वो मर जाएगी, उस तो बिना उसका जो जीवन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो तीसरा नुक्ता अज आप जी की सेवा दे विच रखिया है कि ए अकाल पुरख वाहिगुरु की कामणी है, अकाल पुरख वाहिगुरु की ए पत्नी है, ए उसकी औरत है, तो साडा अभ्यास की होना चाहिए है कि असी अपने इस तन नू जो कि रब की कामणी है कि वह वस्तुआं दईए जड़ियां इस नू वाहिगुरु तो दूर ले जाण, वह वस्तुआं दईए जो इस नू गंदगी दे नाल भर देण, वह वस्तुआं दईए जो इसकी बुद्धि नू भ्रिष्ट कर देण, वह वस्तुआं दईए जो इसकी बुद्धि दे विच बेहोशी लियाण, इस नू असीं बेहोश करिए, ऐसा गुनाह फिर माफ कित्ते कीता जाएगा, फिर साडा फर्ज बनता है यह रब की औरत है इसनू जिस तरह रब ने बनाया उस तरह ही असी रख के संवार के शिंगार के इसनू उसकी दुल्हन बना के रखिए, उस दे विच कोई ऑल्ट्रेशन करने की सानू इजाजत नहीं है, क्योंकि डिजाइन जो इसका है जिस तरह की उसने चाहा है उसने आप बनाया है, ये उसकी औरत अते हमेशा इसनू उस वातावरण दे विच रखिए ताकि एक काया रूपी औरत अपने पति दे पिर दे नेड़े रहे, वह वातावरण की है वह है सत्संग, वध तो वध सत्संग हो, और जितना असी इसनू सत्संग तो दूर ले जाएंगे उतना ही है अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर चली जाएगी, और जितनी दूर चली जाएगी उतनी ऐसा भी हो जाता है कि एक काया बहुत ही दूर गई गई फिर पिर नू भी भुलना शुरू कर जाती है, और जो अपने पिर नू ही भुल जाए पति नू ही भुल जाए उसका हश्र की हुंदा है, बहुत भयानक हश्र हुंदा है। सो एक एक नुक्ता इतना गहरा है कि गुरु साहब आखते हैं
ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਦਾ, ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬਿਕਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਤਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਦੇ ਅਤੇ ਤਪ ਦੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬਸ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ 13 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਵਿਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕੁੰਬਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਫੂਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਓ ਕੀਰਤਨ।

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण षाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

अगम निगम उदरण जरा गुरु अमरदास थपयो परगामी तारण तारण आगे अंतक बजे।

लेकिन सतगुरु ने ना पाया, बिन सतगुरु ने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे अंतर प्रगट आप सुनाया, सतगुरु मुनि ऐसा मुक्त है जो मुझ चुकाया।

रामदास गुरु सच्ची सही एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर गए गुरु नानक लई ध्याय अंगद ते गुरु अमरदास रामदास हुई साए अर्जुन हर गोविंद नु सिमरो सिहर राय सिहर कृष्ण त्याई है जिन दिठिया सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिये करना उन दे आवे ताए दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाही के स्वरूप जायरा जहूर हाजरा हजूर कलकला भरपूर साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आपकी वाणी की महिमा कहीं न जाए।

करे बड़ा होए ना आप गणा गुरसिखी दी एह निशानी। एह निशानी क्या बड़ा

सिखि दिए साध संगत मिल गावंदे रात दे नित चल चल जा गुर सिखि दिए निशान साध संगत मिल गावंदे रात दे नित चल चल जा शब्द सुरत

छिन अलूरी चटणी साध न पुजे लख लख मेवा लाख भगत जगत विच लिख न गए गुरु सिखी देवा लाख भगत जगत विच

गोविंद हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए कंठ लाए अवगुण सब मेटे ध्यान।

छोटे छोटे लाभां नूं वेखदे रहिंदे भाई। बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आती है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नस्सा फिरदा दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर यह पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होण तो बिना, मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं है, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

0: फिर महाराज जी ने पूछी, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए? महाराज जी आखते हैं साढ़े घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ऐ बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम नु त्याना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्याउंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदो हुंदी है जदों किसे दा नाम दिल च वस जाए, वो पूजा हुंदी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। स्वयं सानू समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असि नाम जप रहे हैं तो समझ लो असि पूजा कर रहे हैं। अगर असि रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए, बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां दे संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करन दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इस देर इज सच थिंग। महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि तो गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां थां थां थां ते सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने दे नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसी गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुने, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहिंदे मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं ओ ए कहिंदे हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गए केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहिंदे साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जिना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो यह है नाम की इंपॉर्टेंस। समा समाप्त है, आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते हैं। सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा के गुरु बाबा जी के घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा है। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले की टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम की छड़ी तो बिना चलने की कोशिश करते हैं वो गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, वह गिरणगे, चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए, अते गाइए, फिर कीर्तन का थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग्स जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, एक किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जो इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है, वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

मर ना जाही जिन्हें विसरत राम। वो की कर दे, मर क्यों नहीं जाते? बेशक वो मर जान तो कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्हें राम विसरिया होया है। मर ना जाही जिन्हें विसरत राम, वो जी के करनगे भी की, सड़नगे, तपणगे, जलनगे, अते होर कर्म पैदा करनगे अपने आप ही। कहते बेहतर मरे ही जान। मर ना जाही जिन्हें विसरत राम, जिन्हें राम विसरिया होया है। नाम बिहून जीवन कौन काम, नाम तो बिना जीवन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई कम नहीं है। नाम बिहून, नाम तो सखना जड़ा जीवन है। कहते जीवन कौन काम, नाम बिहून जीवन कौन काम। एक पंक्ति और सुन वाली, आप जी सुन के हैरान जरूर होवोगे। कहते हैं